0: আকাশবাণী দূর আপনারা এবার আবার ছবাদি হিন্দি মাস মজার দিল্লি কেন্দ্র পথের রিলেটেড ইস্যু।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहनाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकार है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमरीका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर ध्यान रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय रणनीतिक साझेदार बनाए हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा

0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ा देगा।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देवांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच

राजसभा में रावण अंगद के पराक्रम का आभास पा चुका था, फिर भी मंदोदरी की समझावन का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो कहती रही, जिन्होंने विराध, खरदूषण और कबंध को अपनी लीला से मार डाला, जिसके एक ही वाण से बाली का वध हो गया, हे स्वामी, आप उनकी महिमा को समझने की चेष्टा कीजिए। उन्होंने आपकी भलाई के लिए ही अपना दूत भेजा था। उसने आकर आपकी सभा में आपके सभी योद्धाओं की वीरता को इस प्रकार छिन्न भिन्न कर दिया जैसे एक सिंह हाथियों के झुंड को तितर बितर कर देता है। आप ऐसे शक्तिमान को मनुष्य समझने की भूल कर रहे हैं। आपका मान और मद सब व्यर्थ है। आप काल के वश में हो गए हैं, इसी कारण आपको वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो रहा है। मंदोदरी के अनुनय को अनसुना कर रावण सवेरा होते ही अभिमान पूर्वक सिंहासन पर जा बैठा और एक बार फिर वही हठधर्मिता। इधर सुबेल पर्वत पर अंगद श्रीराम के सम्मुख उपस्थित होते हैं, जो रावण राक्षस कुल का शिरोमणि है और जिसके बल से सारा जगत परिचित है। उसके चार चार मुकुट अंगद ने किस प्रकार यहां तक फेंके? श्रीराम की इस जिज्ञासा के उत्तर में अंगद का निवेदन है, हे सर्वज्ञ, वे चार मुकुट राजा के चार गुणों साम, दान, दंड और भेद के प्रतीक हैं, जिनका राजा के हृदय में निवास होता है। किंतु रावण राजा के धर्म से विचलित हो गया है, अतः वह उसे छोड़ आपकी शरण आ गए।

अमेरिका विदेश मन्त्री उक्तवान् यत् उभयो देशौ आतंकवाद कारणात् कष्टम् अनुभूतवन्तौ। भारतम् अमेरिका च तेषु सर्वेष् प्रमुख विषयेष् रणनीतिक रूपेण एकमतौ स्तः, ये नूतन शताब्दीं परिभाषयिष्यन्ति। ध्यानास्पदम् अस्ति यत् अमेरिका देशीय विदेश मन्त्री मार्को रूबियो चतुर्दिवसीय यात्रा प्रसंगे सम्प्रति भारते अस्ति। सः अस्य मासस्य षड्विंशति दिनांके अर्थात् श्वः क्वाड विदेश मन्त्रिणां सम्मेलने सहभागं करिष्यति। पश्चिम बंगाल राज्ये भारतीय जनता पार्टी दलस्य प्रत्याशी देवांशु पांडा फाल्टा विधानसभा क्षेत्रस्य पुनर्निर्वाचने सुमहद् विजयम् अवाप्नोत्। श्री पांडा एकविंशत्यधिक नवसहस्रोत्तरैक लक्षमतैः भारतीय सैन्यवादी मार्क्सवादी दलस्य शम्भुनाथ कुर्मिणम् पराजितवान्। तत्र कांग्रेस दलस्य अब्दुर रजाक मोल्लाह तृतीय स्थाने, अपरतः तृणमूल कांग्रेस दलस्य प्रत्याशी जहांगीर खान चतुर्थ स्थाने अवर्तत। पश्चिम बंग विधानसभा निर्वाचनस्य मतदान काले बृहत् स्तरे दुराचारस्य आरोपानन्तरं निर्वाचनायोग फाल्टा नगरे पुनः मतदानस्य आदेशं प्रदत्तवान्। ध्यानास्पदमस्ति यत् अस्मिन् मासे एकविंशति दिनांके पुनः मतदानम् अभवत्। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अद्य राष्ट्रपति भवने षड्विंशत्यधिक द्विसहस्रतमाब्दस्य प्रथमे नागरिकालंकरण समारोहे षट्षष्टि पद पुरस्कारान् प्रदास्यति। अत्र उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह, अन्ये च सम्मान्यजना उपस्थिता भविष्यन्ति। देशस्य मध्योत्तर पश्चिमीय दिग्विभागेष् अतितापकारणात् जनजीवनं पर्याकुलितम् अस्ति। अत्र क्षेत्रेष् प्राय समाना एव स्थितिः आगामिभ्यो षड् दिवसेभ्यो परिवर्तिष्यते इति भारतीयर्तुविभागेन सूचितम्। आईपीएल क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ दिल्ली कैपिटल्स दलेन कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम्। अपरतः राजस्थान रॉयल्स दलेन मुंबई इंडियंस दलं त्रिंशत् धावनांकैः पराजितम्। वार्ताः

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकार दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकार है। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दिन भी दिए जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज

पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मे को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाले संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौतों को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया।

0: विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमरीका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमरीका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ निर्णय होगा। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमरीका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमरीकी राजदूत संजय गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता ने दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay.

सामाजिक सुधारणा की गाल कार्यक्रम प्रस्तुति विष्णु गौर आठ ने 45 मिनट एक गीत सुधा में आप सामने शो के गुजराती सुगम गीतों

0: करने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्र

0: भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 121 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म भूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्मभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल है, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रूपए और डीजल में 2.71 रूपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रूपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित

0: परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना

0: 85 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
2: इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स,
3: भारत और अमेरिका

0: संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो बोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है।

0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमरीकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
1: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर टेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉगर ने कहा कि अमरीकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमरीका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 ज़ायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में

0: कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता ने कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्ले ऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शमायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटी परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, कालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन बीएलई ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडम्बना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने सीबीएसई द्वारा री एवल्यूएशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं। उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 46.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली सीयूईटी स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union and Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of uniform civil code. Petrol price hike by 2.61 rupees per litre while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postponed CUET-UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. If some affairs Mr.

आकाशवाणी जो ही भोज केंद्र है रजू करूँ तो असा जो कच्छी कार्यक्रम हलो करूँ घाल हलो करूँ घाल में पा मिलता हूँ तो शिक्षण साहित्य स्थापत्य ओठा चौठा कहवतू पेरोली जी गाल करता हूँ अने अज घाल केणी है सामाजिक सुधारणा जी। कोई पण सुधारो जीवन लक्षी वे तो उपयोगी निवड़े। जीवन में पण परिवर्तन एज पारस मणी छे अने परिवर्तन संसार नो नियम छे। एरो चोवा जाय तो लकड़ी जरूरी ते पण हल्या छो ओज नीति नियम जा पालन करू तो पण दुखी थियू ने हैरान थियू। अमुक रूढ़ी चुस्तता एड़ी भी जो को समाज न करी ने खूब खोटी भी जो उपयोग खूब खोटो थींदो। वर्षो पहला पांजे भारत में नंढी छोकरी के दूध पीती गईंदा हुआ विधवा के सत्यू गईंदा हुआ अने अनेक तकलीफू व्यू जी समय व्यू नवा नवा माड़ू नवा नवा सुधारा खणी आया। तो भारत देश में कया कया माड़ू क्या क्या सुधारा खणी ने आया तेजी अजगाल केणी है। एटले आज जो विषय है कि भारत में 19वीं सदी में सामाजिक अने धार्मिक सुधारणाएं जी प्रवृत्ति। बाबू 19 सदी में शिक्षण जो अभाव हो माड़ू अज्ञान वा अंधश्रद्धा में मंदा वा वेमो बोरा प्रचलित वा कि ही करू तो ही थी नहीं करू तो ही थी एनी मोटी अंधश्रद्धा में माड़ू आंधड़ा थी गया वा दहेज प्रथा बाल लग्न वृद्ध लग्न अस्पृश्यता सती प्रथा वेठ प्रथा बहुपत्नित्व जरा घने दूषण पांजे भारत में वा अने वर्षो थी हल थाया वा परदेश गमन पर पाप चौवांदो वो स्त्री केरवनी तो नहीवत वो अने अंग्रेजी केरवनी विषय मथे सामाजिक अने धार्मिक रीते सुधारणा करना खूब जरूरी वा तड़े घच मणि एड़ा समाज सुधारक आया अने भारत देश के सुधार्यो आज एनी मणि के पाके याद करना है। पण बाबरू अंग्रेज सरकार दरमियान एकड़ा अंग्रेज अधिकारी वा विलियम बेंटिक अने जो पण घच मणे प्रभुत्व वो हिंगड़े कुरिवाज के दूर करेला करीने सती प्रथा नाबूदी क्या बाड़की के दूध पीती बंद क्या अंग्रेजी शिक्षण जो पायो विधा प्रेस की स्वतंत्रता में लई नर बली के नाबूदी देना दास प्रथा दूर क्या मणि कम क्या वा विलियम बेंटिक अने विलियम बेंटिक जे कम थी इंस्पायर थी ने राजा राम मोहन राय पण घणी प्रवृत्तियो क्या आज पा के घायल करनी है भारत में जो कोई सामाजिक सुधारणा क्या मणि वडिले जी दिग्गज जी राजा राम मोहन राय अने ब्रह्मो समाज जी पहला घायल करू। राजा राम मोहन राय जो जन्म हुगली जिले जे राधन नगर गाम में थयो वो एजा पिता रमाकांत अने माता तरणी देवी 1815 में वेदांत सूत्र जो बंगाली भाषा में जा वेदांत सार जो अनुवाद किया अंग्रेजी में अने 1823 में एक पुस्तक लिखे 1814 में कलकत्ता में आत्म

0: श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार।
0: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
1: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
0: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों

0: संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
1: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
0: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गाँव गणेश धाम परसूली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मंतीम भाई और मोतीम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी, आगे लिखते हैं।
0: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
1: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
0: हिंगोली महाराष्ट्र से साजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़े।
1: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए आपसे निवेदन है। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
0: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
0: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
0: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, आप सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छान कर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: छोड़ दीजिए, मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा

0: काम आएगा। ठीक है ठीक है, जाओ तुम्हें आजाद किया, जाओ।
1: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया, जोर जोर से दहाड़ने लगा।

जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।

0: अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूँ, निकालो मुझे यहाँ से।
1: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहाँ आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
1: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
0: धन्यवाद धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय भटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुगरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा, शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना, पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर। भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
1: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बम्बई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीवा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीवा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
0: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीवा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
1: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
0: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे।

0: एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
1: जवानों,
2: जी सर,
1: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
2: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
1: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो ये जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
3: जी सर।
1: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुम से शुरू करते हैं।
3: जी जनाब।
1: हाथ गोला हाथ में लो।
3: ले लिया जनाब।
1: अब पिन रिलीज करो।
4: फेंको,
3: फेंका जनाब।
5: अरे अरे, ये क्या हुआ,
6: ये क्या हुआ?
5: अरे बच्चों बच्चों बच्चों,
7: साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
0: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुँचे,
3: ये आदि क्या कर रहा है,
0: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
8: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
9: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
10: सही में
9: बहादुर सैनिक हो तुम।
7: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
11: May I come in, sir?
8: Yes, come in. Sir, जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो। सर, वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगा।
11: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
8: हाँ हाँ, कहो।
11: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
8: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
11: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
8: गो अहेड यंग मैन।
11: सर।
7: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
0: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
7: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौबिंदा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
1: साथियों, एक खास तौर पर ध्यान रखा जाए, इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।

0: मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
1: जी जनाब।
2: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
0: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
3: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सब देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
0: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमला, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
3: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
0: फायर!
3: सर, ये टैंक तो गया।
0: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर और स्पीड में, जल्दी करो प्रेमलाल। फायर! समय मत गवाओ, फायर!
3: सर, ये टैंक तो गया।
0: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल। अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है।
1: गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर!
3: यस सर।
4: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई और वो चौबिंडा छोड़कर चली गई।
5: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी, और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरमोत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था, ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
4: सितंबर 1965 का दिन। उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 7 पैटर्न टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापुर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिरनिद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक बार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापुर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापुर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटिलैंगिंडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। कितना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। कैसे किसी

इतना ना मुझसे तू प्यार बना कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा इतना ना मुझसे तू

आयोजित सभाष्मेन कार्यक्रम सम्पन्न करते अभिनेता सुनील दत्त ने पुण्यतिथि पर कटक विशेष फिल्म गीतों संभाया कार्यक्रम में प्रसारण आकाशवाणी भोज केन्द्र पर कर अत्यार 10:15 मिनिट थी भाजपा लोक संगीत।

Ruben Montiel, Tanışk Bakçı, Irşad Kamil. कलाकारों ने स्वरमा हमारा आप सामने रहे था भूल चुक माफ फिल्म नु गीत हिंदी फिल्म संगीत नो कार्यक्रम समाप्त है प्रसारण आकाशवाणी ना अहमदाबाद वडोदरा केंद्र पर थी करवामां आव्युं हवे प्रस्तुत छे गैर फिल्मी हिंदी गीतों नो कार्यक्रम જસ્સી અને સાથીઓને સાંભળીએ ગીતના શબ્દો છે એક તારા વચતા

शूटिंग चालू चुके सरकार श्री ब्यागो भानी दुकान की अंत्योदय राशन कार्ड धारकों और अग्रता धारकों के कुटुंबों ने मेरा पात्र अनाज बाबते संबंधित जिला निवासी अधिक कलेक्टर श्री फरियाद कर सकता है। हम तो माई राशन मोबाइल ऐप द्वारा राशन कार्ड में लगती विविध माहिती तमज बोरवेला अनाज में लखन निवासी मेरी सकता है तथा फरियाद बढ़ावी सकता है। जो अधिकारियों ने निर्णय की संतोष न थे तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी की अपील कर न्याय मेरी सको। फोन नंबर 0709 232 5849। शुरू करना चाहिए।

0: माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: आप सुन रहे हो आकाशवाणी ने अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और भूज केंद्र बराबर 1 बजे समय शो दिल्ली की प्रसारित हिंदी में समाचार।
2: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय

0: आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक ने आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in 3 categories, Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first round of the civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. The Supreme Court today expressed concern over repeated lapses in the conduct of the NEET examination, saying it was sad that the National Testing Agency, NTA, had not learnt any lesson from the earlier paper leak controversy. A bench of Justices B.S. Narasimha and Alok Aradhe sought responses from the Centre, the NTA and the CBI on petitions demanding replacement of the testing agency with a more robust and autonomous body to conduct the medical entrance examination. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar has said India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said India and the U.S. must always be clear about zero tolerance for terrorism.
3: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why

नमस्कार भाजी दोस्तों के लिए विशेष कार्यक्रम जय भारती। दोस्तों कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं ईमानदार फिल्म का गाना सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाज में।

भारती कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी का अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भूज केंद्रों से किया गया। 2:15 पर आप सुनेंगे दोपहर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कमल लता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नेट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शटल 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नीलाक्षी वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं का जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर सरकार है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाले संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक

0: पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिविंग रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों

0: ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच इंडियन उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वें वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रूपये का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही है। उन्होंने कहा कि देश की नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रूपये और डीजल में 2.71 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रूपये और डीजल 95.20 रूपये प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीतिक को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की

0: ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबलो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुच्चेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर है, इसलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डिएगो केश और आर प्रज्ञानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंडमास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंगा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तंजिम डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मुनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रही है। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया।

बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी और नौवें शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मध्याचल के अंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक, होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म देव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषा में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषा में अनुवाद

0: या आकाशवाणी का दिल्ली केंद्र हमारे
1: अगले कार्यक्रम की
0: प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है। अब हम आपको
1: राष्ट्रपति साहब भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकार समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह डालिस और लालिमा अलीजा। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
2: नमस्कार।

0: conference today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Bhushan is awarded for exceptional and distinguished service and Padma Shri, and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
1: इस वक्त राष्ट्रपति जी का ये बता इंतजार हमें बता दो कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र दिवस लगातार 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी। ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे पांचवीं शताब्दी के मथुरा के ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा जो कि गंभीर शैली में बनी है और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से तैयार गुंबद और दोनों बहुत ही सुंदर

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था मनोहर रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पी वी गुरुंग पुरस्कार पा रहे थे।
1: राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्यवाही आरंभ की।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग की बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रसाद वाला है।
1: श्री दरमान सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हेमा के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक करियर रखा है। 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009।
0: भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajan served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Benares Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by VHU.
1: Padma Bhushan, Shatabhani Dr. R. Banesh, Kala Agarwal.
0: विशेषज्ञ 64 वर्षीय शताब्दी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शताब्दान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें लिखी हैं।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू बी रीड।
1: भगत सिंह कोश्यारी योग कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी जिन्हें भगत देव के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे 74 वर्ष और लोक सेवा का अनूठा काम किया है राष्ट्रवादी नेता।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश में। ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक has played an important role in defining and developing India's banking and financial sector over 4 decades. And it leads several key bodies serving as co-chairman of the
1: Jibal Shumar Malhotra, Manmohan, Lok Karya, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: डेटा 23 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिक और अकादमिक भी थे। उनके बिहार पर अजय कुमार मल्होत्रा
2: रामास्वामी
1: चिकित्सा गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: विज्ञापन उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे को नहीं जानता हूँ, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनकी प्रयासों को पुरस्कार प्राप्त किया है।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया
1: एंड द मोस्ट फेमस। श्री विश्व बंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी, लोक कला के बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की, खासतौर पर लोक नृत्य की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
2: Shri Vishwabandhu was the founder of Sarangan, one of Bihar's most respected cultural institutions, and he went so over 6 decades.
1: Shri Bharat Singh Bharti, Kala Lokayan.
0: Bharat Singh Bharti, 90 years ki umar mein bhi aap sanskritik virasat aur khastaur par Bhojpuri gayan aur Bhojpuri lok shailiyon ka abhi bhi samrakshan kar rahe hain। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरु जी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सावर फेस्टिवल इन मॉरीशस इन 1987 व्हेन हिज एल्बम थ्रू द टाइम वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Abhayaram Dhul Kala
0: जैसलमेर की तबाराम झील अलगोजा बजाते हैं। कितना सुंदर साज जो विशेष और पैर की सूखी लकड़ी से बना होता है। उन्होंने जैसलमेरी पट्टू पहना और ऊपर जैसलमेरी साफा चुनरी का।
2: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Manirwal Gidhar Award in 2013, Manirwal Gidhar Trust Jaisalmer, and many, many other awards.
1: हरमनप्रीत कौर भुल्लर खेल क्रिकेट।
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुमन का परिणाम पाने हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
2: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket, but have also contributed significantly to the
1: growth of Ratilal Mohanlal Borisagar, Sahitya Evam Shiksha.
0: 85 साल के हैं रतनलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
2: Yes, he has received many awards and honors, and after 36 years, his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He has also written a biography, Women by Only God.
1: Shri Kumar Bose.
0: कुमार बोस तबला में बहुत बड़ा नाम है। 4 अप्रैल 1954 को जन्मा था और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्मभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।

0: integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in Ireland already, as the departed Academy of Oscar and Pandit Bhimanath Mangeshkar Award, along with immense respect for the
1: Anandan Bapurao Bhutan Samad Sala. मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता बापू जी 70 साल के हैं और पूज्य वंश संत पिपरो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुल आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
0: श्री बोध है पंतवी ज्वेष्ठ संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा राष्ट्रपति भवन मेजर कुंभ मेला साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्कृत विश्व हिंदू परिषद के मेंबर। He has also served as full-time personal secretary for Lord Brahmaji Samad Sabha.
1: Swami Brahmaji, बहुत से साल के लिए आप चुके हैं पाकिस्तान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
0: Still from practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
1: Kesariya rang ka aapne saafa pehna hai aur kesariya hi paridhan hai. राष्ट्रपति जी के सामने अभिवादन करते हुए पद्मश्री से सम्मानित होते हैं।
2: श्री प्रसन्नजी चटर्जी का फिल्म अभिनय
1: प्रसन्नजी चटर्जी इन्हें गंगा राय नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है। खासतौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला
0: है।
1: नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है। खासतौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
0: इन द

0: সহায়তা ঘট বলে চিকিৎসা।
1: आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
2: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Samita Godbole, decided to move to Bistar to serve tribal communities.
0: Shrimati Sunita Godbole,
1: क्योंकि कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही है सुनीता गोडबोले। एक साथ पति पिछड़े मिलता हुआ आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और खास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल छत्तीसगढ़ में 30 साल से सेवा की है।
0: श्री तेची गुबन समाज सेवा
1: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तवकार और सामाजिक कार्यक्रम अरुणाचल एक परिधान पहनकर जिसका सिर पर पांच गोल हॉर्न बनता है नमस्कार करते हुए तुलसी गुबन 65 वर्षीय पंक्षण प्राप्त करते हुए
2: visiting remote villages bordering China, Myanmar, and Vietnam. They also gave a team of delegations to meet the vice president, to report on the security of
0: the Hyundai Chikitsa.
1: In Nandi Salki Hill, and Bharat Ki, in Nandi Vashal Sir, this is Shaks Nain, Bharat Ki Seva Ki, Mashal Chikitsa Ki, और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण जो कि तमिल में है मूल रूप से उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के एडीसी का हाथ पकड़कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए
2: And Dr. Hindu was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986. He brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate, maternal mortality rate, and drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. And after he received the prestigious Dr.
3: राजस्थान में अलवर से गैफोदिन जो आते हैं इन्होंने राजस्थानी शाखा का नाम नमस्कार करते हुए जाते हुए योगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भक्ति बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अलीबक्षी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
2: Through his sustained artistic practice, Shri Gavardhan

0: Castle, Black Door. पचहत्तर साल के लिए राजिका संघ ने सोचे रामक दिन नाम से बुलाते हैं। आप जो बात करते हैं एक महान और मशहूर लोक संगीतकार है, 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
1: रघुवीर खेड़कर
0: को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार है और तमाशा की एक मंडली ही चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: Performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Sri Khedkar stood up as a staunch advocate. He had appealed for financial support and leveraged service in solidarity for poor artists.
1: Sri R. Krishnan Tithra Mangaprant, fellow Kurumba Garbi Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: R. Krishnan Tithra जिनका गायक 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था। आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी

0: सुशीला कृष्णन उनकी पत्नी पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
1: So I'm Krishnan Kapoor. His mother follows a natural progress in his entrepreneurial skills as a storyteller.
2: He's also Dr. Yas Krishnan Coach by musicology.
3: Thank you, musical artist. And as a king of the past, I'm going to be a little
0: bit of a problem. एक आत्मिक संबंध है। बॉर्न में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
1: Professor Koch is director of the State Ethnographic Collections and the State Art Collections at Sonia in Dresden, Germany, since October 2025.
2: Yes, I just said that the next one is in Sadesh Kumar, Sahitya Evam Shiksha.
3: Yes, I think this is Sadesh Kumar. सुप्रसिद्ध शिक्षा विदा और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: वही प्रोफेसर मामीदला जगदीश कुमार फ्रॉम एन ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनपी 2020 इन द फॉर योर अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक विद क्रेडिट्स
2: श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग
1: प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू प्ले reformed crime control practices, crackdown on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 50%. As additional DG
2: Lal, Shivan, Devdalal, Badalal, Krishi.
3: Devdalal, the final topic of the कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्म है, 79 वर्ष के हैं।
1: श्री रंग देवाल इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच इज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैज डन रिसर्च वर्क इन जोहार एंड पुणे एज़ वेल।
2: श्री अंकित गौड़ा समाज सेवा
0: 70 साल के अंकित गौड़ा और माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
1: श्री अंकित गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 इयर्स यूजिंग हिज एंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पस एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu, and several other Indian languages. And various subjects such as literature, history, art, culture, and philosophy.
2: Professor Dr. Saroj Mangal, Chikitsa, Cardiology.
3: Once again, Shayan, Dr. Mangal, International Cardiologist.
0: आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
1: प्रोफेसर डॉक्टर मंडल हैज सर्वड ओवर 6 लाख पेशेंट्स इन ओवर द 35 इयर्स इन एन इंडिपेंडेंटली परफॉर्मड एंड सुपरवाइज्ड कोरोनरी एंजियोग्राम्स एंड 50,000 एंजियोप्लास्टीज।
2: प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि पुरातत्व विज्ञान
0: राष्ट्रीय संग्रहालय के महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
1: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi, and Jammu and Kashmir, and discovered 200 archaeological sites, and he directed 20
2: excavations. Vinod Chandra Mandlawala, Samaj Seva.
3: Urban men, who don't know,

0: डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खासतौर पर गुजरात और भारत में शुभ अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
1: श्री अमर लेवाला has a long-term vision that by 2037, no citizen should lose life because of the non-availability of organs. For that, he has traveled extensively across India.
2: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
0: लोकप्रिय जनजाति आवाजों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाजों को संरक्षण करने में चार दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
1: इंटरनेशनल डॉक्टर मिश्र has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's KS, Korean University, South Korea, Thailand's Manipal University, and Russia's Academy of Sciences.
2: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी का कंठा एम्ब्रॉयडरी
0: कंठा ऐसी कलाएं जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
1: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शीप गुरु अवार्ड इन 2016। She's also been acknowledged by the government of West Bengal by conferring on her the BHC Award.
2: Hari Madhav Kala Theatre and Kipputra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी देहांत पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय
2: व्यापार एवं उद्योग
0: चैतन्य श्रीनिवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
1: Under Srinivas's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra launcher mission, which is
2: called Gajanavel Khel
0: Silambam. Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं खेल पजानीवेल।
1: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also found the Mandalan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
2: Shri Yarmakyal Chimulal Pandya, Kala Man Akhan.
0: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लक्ष्मीलाल पंड्या और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने डिग्री पहनी है और व्हील चेयर पर जाते राष्ट्रपति जी खुद अपने आकर श्रीपंड्या का
1: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
2: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया।
1: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1988 as Secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine, Akshara.
0: Rashtrapati ji swam ek seedhi upar ke niche aati hui aur Pant ji jo 90 saal ke hain unka samman karti hui anekon ko dhani. Is baat ka राष्ट्र ऐसे सेवकों का ऋण है।
1: His work earned him the Vishwa Hindi
2: Sabha Garam Mela Bal Krishna Prasad Mahapran Kala Gayan उनके पुत्र श्री Garam Mela अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
1: Over a career spanning six decades, Shri Prasad 6,000 concerts across India and internationally.
2: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa Tuberculosis.
0: Chikavashiya Dr. Rajendra Prasad, a suprasiddh chest physician hai aur shay rog aur khas taur par shay rogiyon ki dekhbhal aur unki chikitsa mein aapne bahut mahatvapurna karya kiya hai.
1: Professor Dr. Prasad was the first in India to establish the association of heavy smoking and the use of biomass fuel smoke with chronic obstructive pulmonary disease, tuberculosis and lung cancer. He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
2: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव, एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है.
1: He has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
2: been
0: several important leadership positions. Sadhvi Shyam Reddy, एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है.
1: Shrimati Reddy was the first woman chairperson of Telangana Sangeet Natak Academy, governing council member, Sangeet Natak Academy, Delhi, and has received prestigious awards like Sangeet Natak Academy Award and many more.
2: Dr. Palkonda Vijay Anand Reddy, Chikitsa Oncology.
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पालकोंडा विजय आनंद रेड्डी. 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है.
1: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
2: Harichandran Shaikia Kala Satriya Nitya.
0: सत्रिया असम की एक सुप्रसिद्ध कला और हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है. माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हैं.
1: श्री हरिचरण शैकिया परफॉर्म्ड सत्रिय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. आल्सो ही परफॉर्म्ड द भरगीत विद मणिराम ग्रैंड मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948.
2: प्रोफेसर गणपति कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य
0: एवं शिक्षा विद्यालय में से हैं. आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं. नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाती है.
1: प्रोफेसर वेंपति कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya Evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है. प्रोफेसर Shafi Shauk.
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV series and films.
2: Shri Baldev Singh, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ye kala ki kosh hai. Aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka praman ki unka kitna bada contribution raha.
1: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery to one of India's most productive centers for hockey
2: children. Shri Yamnan Jatra Singh, Mangal Plant.

0: आज संकीर्तन उनके पुत्र श्री यजमान विशंभर सिंह।
1: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और इस वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, Vidyan Evam Engineering.
1: Ashok ji ne Bharat mein basmati chawal ki kheti ka kayakalp karne mein bahut bada yogdan diya hai aur is contribution ke liye आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
1: हमारी श्रीमती शिव शंकरी जी की, आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और खास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, खासतौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज्यादा उपन्यास, 40 से ज्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज्यादा लघु कथाएं, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: श्रीमती शिव शंकरी कम्प्लीटेड हर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री एज अ यूनिवर्सिटी excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: Hello, ji. Akashwani ke up mahanirdeshak rahe aur vigyan ka एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज एन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
0: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में मेडिसिन के मानद प्रोफेसर हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM।
0: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा, समाज सेवा।
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी है, प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और खास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाते हुए और सफेद साड़ी इन्होंने पहनी और झुककर अभिवादन करते हुए माननीय गृहमंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए।
2: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities to sustainable agriculture and livelihood projects.
0: श्री एन स्वामीनारायण, कला भक्ति संगीत।
1: तंजावुर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
2: मास्टर ऑफ द आर्ट एंड सर्व्ड एज ऑथोवर इन मेनी टेंपल्स ऑफ तमिलनाडु एंड

0: worked at Tiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He served as a teacher in the VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
1: Dr. Urban Krishna Thakral, Chikitsa Ayurveda.
2: Dr. Thakral, Ayurvedic Padhati ke Shail Chikitsak hai. और भारत में क्षार सूत्र चिकित्सा के माध्यम से कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य क्रिया का निवेदन भी आगे बढ़ाई है.
0: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही हैज हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो.
1: Dr. Gopal G. Trivedi, Mandapuram, Vigyan Evan Engineering, Unke Putra, Shri Raman Kumar Trivedi.
2: Zyada dhanyu hai, 12 Mai ko hi aapka nidhan ho gaya tha. Dr. Gopal G. Trivedi, ke krishi vaigyanik the, aur Rajendra Krishi Vishwavidyalaya ke purva kulpati bhi reh chuke hain, puraskar prapt karte hue unke putra Raman Kumar Trivedi.
0: Dr. Trivedi, since the last 5 years on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
1: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
2: Varishth Kalakar hai, aur 6 dashakon se zyada samay se aapne Gujarati Rangmanch, Hindi Television, aur Film Udyog Kshetra mein kaam kiya hai.
0: Shri Vaidya
2: ka Jodhpuri suit pehna hua.
0: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and very adaptable.
1: Professor Jujal Vasi, Vigyan Evam Engineering.
2: Professor Jujal Vasi, IIT Bombay में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक से क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है.
0: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस. He has published about 200 papers in leading journals.
1: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
2: Dr. Narayan Vyas, विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्व विदों में से एक है. खासतौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीरी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है.
0: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Shudhir Vakankar Award from the Government of Madhya Pradesh in 2009.
1: Professor Ranbir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
2: Ranbir Singh Ji, Darjeeling Pahadiyon ke ek pratishthit वनस्पति शास्त्रीय शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है.
0: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग. अ पैशनेट एडवोकेट ऑफ साइंटिफिक टेंपर एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, ही लेड अ 6-year कंजर्वेशन मूवमेंट दैट वाज अ ह्यूज ह्यूज सक्सेस.
1: सॉरी हेलन बार समाज सेवा.
2: अब बारी हेली गौर जी की. आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है.
0: श्री वॉर हैज स्पेंट मोर देन 50 इयर्स नर्चरिंग एंड बिल्डिंग द आइकॉनिक लिविंग रूट ब्रिजेस ऑफ द ईस्ट खासी हिल्स. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
2: And now, Sachi Mahoday aate hue, kyunki ye antim samman tha aaj ka. और राष्ट्रपति

0: दर्ज कराया है। सिंधी समाचारन समा ज्योति फुलवाणी सबका अवल बुधना से खास खास खबरों।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार अता कया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूजी इंटरन पेपर लीक मामले में मरकजी सरकार एनटीए और सीबीआई का जवाब तलब कया। एचआईओ पहली थेले पेपर लीक मामले में एजेंसियों को भी सबक को न सिख्यो। असम में विधानसभा में एक जड़े नागरिक नियम बिल के पेश कयो गयो। आबहवा महक ने इंदर 3 दिन लाए दिल्ली में येलो अलर्ट जारी कयो। नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट अजय शो में ओस्लो में शुरू थी। खबरों तफसील सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में साल 2026 जा पद्म पुरस्कार अता कया। छाट नाम्यारे हस्तियों के पद्म पुरस्कार से निवाजे हुए इन्होंने बिन हस्तियों के पद्म विभूषण 6 के पद्म भूषण और 58 के पद्मश्री से निवाजे हुए। नाम्यारे फिल्म अदाकार धर्मेंद्र सिंह देओल के कला के खिते में उनके योगदान लाए मरणोपरांत पद्म विभूषण से निवाजे हुए। अदाकार जी पत्नी और लोकसभा मेंबर हेमा मालिनी यो अवार्ड ग्रहण कयो। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शिरकत कई। नीट इम्तिहानन में बार बार गलतियों के गिनती जो इजहार करे सुप्रीम कोर्ट चयो तो इो अफसोस जोगो है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी गुजरियल पेपर लीक तकरार मां को भी सबक को न सिखो है। एक रिपोर्ट असांजे नुमाइंदे खां।
2: न्यायाधीश पी एस नरसिम्हा और आलोक अराधी की पीठ में केंद्र सरकार राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: एनटीए 28 मई थींदड़ गुडल यूनिवर्सिटी दाखिला इम्तिहान की तारीख मुलतवी कर छी है। एजेंसी चयो तो ही फैसलो बकरी ईद की तारीख में तब्दीली के कर दुरुस्त थियल इम्तिहान की तारीख की पधराई जल्द कई वी ए शागिर्द ताजो अहवाल लाए एनटीए की सरकारी वेबसाइट चेक कर सकन था। दिल्ली की एक अदालत नीट यूजी पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे के फिजिक्स लेक्चरर मनीषा संजय हवालदार के 6 दिन लाए सीबीआई की हिरासत में मोकलो है। सुप्रीम कोर्ट मनोरंजन ए मेहमान निवाजी के इधारों में बारन की मजदूरी से सख्त पाबंदी लगाने की दरख्वास्त मरकजी सरकार के नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट बारन के हकन लिए कम कड़े एक ग्रुप की दरख्वास्त जो नोट वरतो। दरख्वास्त गुजार मरकजी सरकार के हिदायत कई है त 18 साल का घट उम्र वाले बार ऑर्केस्ट्रा डांस बार मसाज पार्लर स्पा ए सैलून में कम करने या परफॉर्म करने का रोको वे। सरकार मुल्क में पेट्रोलियम उत्पादन की फरामी के यकीनी बनाने लाए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। अग्नेन्द्रीय में मुंतजम थियल ओला एशिया की तकरार से एक अंतर वजराती प्रेस कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे पेट्रोलियम ए कुदरती गैस की वजरात की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा चाहिए
3: रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है। इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: ये खबरों तभी आकाशवाणी पर बुधी रहा है। वधिक खबरों के लिए तभी असांजी वेबसाइट newsonair.gov.in के फॉलो कर सको था। ये खबरों तभी असांजी यूट्यूब चैनल एयर न्यूज गुजरात पे भी बुधी सको था। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता

0: सांसद देबाशीष सामंतराय अॼु पार्टीअ जी शुरूआती प्राइमरी मेंबरशिप तां इस्तीफ़ो ॾिनो आहे। हुन राज्यसभा जी मेंबरशिप तां पिण इस्तीफ़ा ॾिनो। बीजेपी जे वॾेरे नवीन पटनायक खे लिखियल पंहिंजे इस्तीफ़ा में देबाशीष सामंतराय तोहमत मड़ी त पार्टीअ जे अंदरि हुन खे ॼाणी वाणी ज़लील कयो वियो आहे। असम सरकार अॼु विधानसभा में हिक जहिड़े नागरिक नियम बिल खे पेश कयो। इन बिल जो मक़सद हिक खां वधीक शादियुनि ते पाबंदी लॻाइण ऐं लिव इन रिश्तनि जी रजिस्ट्रेशन खे लाज़मी बणाइण आहे। बिल में इहा महफ़ूज़गी आहे त इहो नियम आसाम में रहंदड़ बुटड़ियल कंहिं बि क़बायली ज़ातीअ ते लागू कोन रहंदो। बिल में शादीअ लाइ मर्दनि जी घटि में घटि उमिरि 21 साल ऐं औरतुनि जी 18 साल उमिरि मुक़ररु कई वई आहे ऐं हिक खां वधीक शादियुनि ते पाबंदी लॻल रहंदी। कानूनी हक़नि जी हिफ़ाज़त लाइ बिल में शादी ऐं तलाक जी रजिस्ट्रेशन जी तजवीज़ खे लाज़मी पेश करणो रहंदो, जंहिं में जीवन साथीअ लाइ सार संभाल, विरासत ऐं ॿियनि कानूनी सलामतीअ खे यकीनी बणाइण अहम हूंदो। काबीना जे वज़ीर अतुल बोरा, मुख्य वज़ीर हेमंत बिस्वा सरमा तर्फ़ां ऐवान में हिक जहिड़े नागरिक नियम आसाम बिल 2026 खे पेश कयो। क्वाड जे परॾेह मंत्रियुनि जी बैठक सुभाणे नई दिल्लीअ में थींदी, जंहिं में ऑस्ट्रेलिया जो परॾेह मंत्री पेनीमॉन, जापान जे परॾेह मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ऐं अमेरिका जो परॾेह मंत्री मार्को रूबियो हिसो वठंदो। बैठक जी सरबराई डॉ एस जयशंकर कंदो। हिकु रिपोर्ट असांजे नुमाइंदे खां।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ईरान जी परॾेह वज़ीर जे तर्जुमान इस्माइल बाकाई चयो त अमेरिका सां गॾु जारी ॻाल्हि ॿोल फ़िलहाल संघर्ष खे ख़तम करण ते मरकूज़ आहे ऐं एटमी मुदे ते हेल ताईं का बि चर्चा कोन थी आहे। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताउनि सां गॾु बैठक करण लाइ हिन वक़्तु भारत में आहे ऐं हू नई दिल्लीअ में क्वाड विदेश मंत्रियुनि जी बैठक में शामिल थींदो। जापान जे परॾेह मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भारत जे 2 ॾींहनि जे दौरे ते अॼु शाम नई दिल्लीअ पहुचंदो। पेट्रोल जी क़ीमत में अॼु 2.61 रुपया ऐं डीज़ल में 2.71 रुपया इज़ाफ़ो आंदो वियो आहे। ध्यान ॾियारो त डीज़ल जी क़ीमतुनि में इहो गुज़िरियल 2 हफ़्तनि में 4 भेरो इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। घरेलू शेयर बाज़ार जी फहिरिस्त में अॼु कारोबार अटकल 1.4 सिकड़ो जी वाधि सां 66,499 ते बंदि थियो ऐं निफ़्टी 28 पॉइंटनि जी वाधि सां 24,022 ते बंदि थियो। आबहवा महकमे दिल्लीअ लाइ 3 ॾींहनि लाइ तमामु तेज़ गर्मीअ लाइ येलो अलर्ट जारी कयो आहे। राष्ट्रीय राजधानीअ में गर्मीपद 34 खां 36 डिग्री सेल्सियस थियण जा इम्कान ज़ाहिर कया विया आहिनि। भारत जापान में मुंतज़िम इंटरनेशनल अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन एशिया ऐं ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रचियो आहे। भारत कुल 5 मेडल खटिया ऐं पुरुष प्रतिगिरीअ में दबदबो क़ाइमु रखियो। नॉर्वे शतरंज अथॉरिटी 2026 जो आगाज अॼु नॉर्वे जे ओस्लो शहर में थी रहियो आहे। टूर्नामेंट भारतीय वक़्त मूजिब राति 8:30 बजे शुरू थींदी ऐं आईपीएल क्रिकेट जे पहिरें क्वालिफायर मुक़ाबले में सुभाणे रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु जो मुक़ाबलो गुजरात टाइटन्स सां शाम 7:30 बजे थींदो। आख़िर में ख़ासि ख़बरूं हिकु बार ॿीहर ॿुधंदा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार अता कया। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूजी इम्तिहान रेफरलीक मामले में मर्कज़ी सरकार एनटीए ऐं सीबीआई खां जवाब तलब कयो ऐं चयो त पहिरीं थियल पेपर लीक मामले मां एजेंसियुनि को बि सबक कोन सिखियो। असम में विधानसभा में हिक जहिड़े नागरिक नियम बिल खे पेश कयो वियो ऐं नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट अॼु शाम ओस्लो में शुरू थींदो। ख़बरुनि जो इहो अंक ते पूरो थियो। नमस्ते।

0: कल संपूर्ण अफ्रीका युवा दिवसको मतलब कार्यक्रम युवावाणी प्रसारण आकाशवाणीमा अहमदाबाद वडोदरा केन्द्रथी करवामा आव्यो।
1: मन की बात है जन जन की, सभी के कुछ अपने से, संघर्षों के कुछ हिस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं, इसके लिए आप अपने सुझाव 31 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या माई गोव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा।

να δούμε πώ θα δείξει τι θα κάνει να δείξει που πάμε προ σε μια νικία. Είναι συντόχα στην κοπαντιβούσα και η κοπαντιβούσα ώρα τάβων κοπαντιστήσει σε μια νικία. Γιάννη Μάνη φίλμα βινήτε τριμήντου συνδιούργου πλά και τσίτινον και λιουμπάνκελη μόνο κοράντ πάντα σε σαμάνε τέδια αβινήτε και πατνία λούξα βασαδίσε είναι βάλεν η νέη προσκά μια ηλικία. Βάλεν βέβαια δόκτυρ εν βέβαιν κομή πάντα βιβούσαν σε σαμάνε τέδια γέχε. Ούτρα καν και πούρνου και μεντρή αρμαράς του κύριε Τζιπάλ βέβαιτσιν κουσιόνι σε τάβδανε δόκτυρ Αρ Γκρέχ Udaj Suresh Kumar, or Dr. Kalipatira Masami, or Islamiku Padma Bhushan se sammanit kiya gaya. Jin pratishthit hastiyon ko Padma Shri se sammanit kiya gaya hai, unme Bharatiya Mahila Cricket Team ke Captain Harmanpreet Kaur Bhullar, Tagaram Bhil, Ratilal Mohanlal Borisagar, Swami Brahmadev, or Kumar Bose shamil hain. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है. श्रीमती सीतारमण ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में और तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया. सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए

0: कोर्ट के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। सिविल की अग्रीमेंट फॉर साइन यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG

0: sección. Tú pones la sala de batalla que dice un arco que brindó a Santos de las buenas horas. Se gusta nada ni que en desempeño como no vendió en el hospital que se llevó a Santana, bien fue un poro de esa tropa de la que me encanta ahí y que ya le dije ya chica por lo que se le quiere. Ya chica que tiene que en desempeño a todas las veces que me chungo la orquesta, danzbar, Wisai Pong, Spa, o Salunga Kam Kane, ya perform Kane Parroquia Yanike, Nidis de Yanike, Nankia. Quod que Vidas Mantri de Beta Kale de Lini Hogin, Australia que Vidas Mantri Penny Wong, Japan que Vidas Mantri Toshimitsu Motegi, o Amrita que Vidas Mantri Marco Rubio y Salenge, Vidas Mantri S.J. Sankar, Beta que Dexta Karenge. महिला शतरंज प्रतियोगिता से नौवे के उत्सव में शुरू हो रही है। टूर्नामेंट भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में प्रथम नागरिक सम्मान समारोह में पद्म पुरस्कारों एनायत कर्या। नीट परीक्षा संचालन में वारंवार थती भूलों पर सर्वोच्च अदालते चिंता व्यक्त करी। सरकारी व्यापक जाहिर परामर्श माटे बीबीजी रामजी अधिनियम 2025 हेठ ड्राफ्ट नियमों प्रकाशित कर। पेट्रोल भाव में आज प्रति लीटर 2.61 रूपया जारी डीजल भाव में 2.71 रूपया वधारो कर। गुजरात सरकार और मेटा वच्चे व्हाट्सएप आधारित सिटीजन सर्विसेस डिलीवरी अंगे महत्वना एमओयू गांधीनगर में संपन्न। एनडीए एमसीए में प्रवेश प्रक्रिया आज थी आरंभ थयो। एडमिशन कमिटी द्वारा जाहिर थे आ कार्यक्रम मुजब आज 30 जून सुधी ऑनलाइन नोंधणी करी शकाशे। कच्छ जिला पंचायत में 23मा प्रमुख तरीके प्रभाबेन रबारीए अने उप प्रमुख तरीके महावीर सिंह जवाबदारी संभाली। कच्छ जिला में आकड़ा उनाळानी शुरुआत साथ ज पानी की कटोकटी एंधाण जिला 20 मध्यम सिंचाई डेमो में हाल मात्र 35% जल जत्थो बच्यो। गुजरात सरकार प्रवेशोत्सव कार्यक्रम हेठ भूज सहित समग्र कच्छ जिला में 3-5 वर्ष तमाम बाळकों ने आंगणवाड़ी शिक्षण नो लाभ आपवा विशेष झुंबेश शुरू कराई। मांडवी चेम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज द्वारा सतत 14मा वर्षे दाताओं सहकार थी 60 लाख रूपया खर्चे गाय तेमज भटकता अखलाओ माटे 360 गाड़ी लीला चारा 3 मास सुधी निरण करवानो सेवा यज्ञ शुरू करायो। पश्चिम रेलवे द्वारा गांधीधाम 4 रेलवे कर्मचारियों ने तेमनी सतर्कता और त्वरित निर्णय क्षमता बदल मैन ऑफ द मंथ संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित कराया। दीनदयाल पोर्ट ऑथोरिटी और भारतीय चोखा निकासकार फेडरेशन उपक्रमे कंडला जेटी नंबर 16 खाते श्रमिकों माटे एक अठवाडिया अन्न क्षेत्र और छाश वितरण प्रकल्प उद्घाटन करायु। राज्य में आगामी 4 दिवस गर्मी यथावत रहेवानी संभावना। हवामान विभागे सौराष्ट्र और कच्छ दरियाकांठा विस्तारों में गर्मी येलो एलर्ट जाहिर कर्यु। नमस्कार।

लगन ही कार्यक्रम में आज हम आपको सुरेंद्र गुलाटी के लिखे नाटक यादों की परछाइयों का पहला भाग सुनवा रहे हैं। निर्देशन दीनानाथ का है।

0: मैंने
1: पूछ रहा हूँ
0: आज
1: कमरा क्या है? मेरे पास तो कोई इन्विटेशन है।
0: अरे उसका भाई इंडियन से भेज रहा है, तुम्हें नहीं मालूम? अच्छी बात है।
1: ओ भाई मुझे नहीं मालूम।
0: चलो मैंने बता दिया, काफी है।
1: तो
0: मुझे यकीन है उसने तुम्हें इन्विटेशन जरूर भेजा होगा।

0: लाओ, लेकिन वह व्यक्ति नहीं मिल पाया। तो देखो ना, छह बज भी चुके हैं और मैं अभी तक आपको पूरी बात
1: हूँ, लेकिन वहां से साल छह बजे के बाद पहुंचता
0: है यार। मैं जरूर आ रहा था शाम, अगर तुम मुझे सुबह फोन करते थे। अब शाम को मुझे एयरपोर्ट आगे ले जाना है, तो वहां पर बस चक्कर दिखाकर भागूंगा। आपको जो एयरपोर्ट पहुंचना है, मुझे हैदराबाद से मेरे मैनेजिंग डायरेक्टर आ रहे हैं, उनको रिसीव करना है। फिर जाने के पास कितनी देर लग जाए, मेरे भी उधर ही सारे मुश्किल ये है, उधर भी कोशिश करूंगा, मगर प्लीज करने से कुछ नहीं करना। बाकी करेंगे जाना है।

0: mein Problem war an der Mauer.
1: तुमको चैन नहीं पड़ता।
2: तुम किसके मालिक हो?

0: Good evening, Uncle.
1: Oh, good evening, Vikram.
0: Hello, Auntie.
2: अच्छा है ना तू?
0: आप दोनों को कविता के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई आंटी.
1: अरे भाई ये बधाई बधाई तो खुद उसी को जाकर दो. बड़े देर से तुम्हारा इंतजार कर रही है.
2: बहुत नाराज है तुमसे. सब लोग तो कभी से आ चुके हैं और तुम इतना लेट आए हो. वो बिल्कुल बैठी है.
0: आप फिक्र मत कीजिए आंटी. देखिए अभी जाकर उसका मुँह बिल्कुल ठीक किए देता हूँ.
2: कुछ नहीं है. डाइनिंग रूम में से होकर निकल जाओ. नहीं चलो
0: आंटी बैठे रहिए. आप फिक्र मत कीजिए. मैं सब अभी ठीक किए देता हूँ.
2: बहुत देखो ना सिर्फ 4 साल हमने सर्विस करते हुए और अपनी कार खरीद ली है. अपनी फर्म की लोकल ब्रांच में नंबर 2 है. 2 साल तक नंबर 1 हो जाएगा. किसी बता रही थी सब मिलाकर 1400 मिलते हैं. और साल 2 साल बाद
1: अरे भाई मैं उसकी नेचर की बात कर
2: रहा हूँ. अच्छा है अच्छा है. हाथ में प्रेजेंट का डिब्बा बहुत बड़ा था. ग्रेट का डिब्बा लगा हुआ था. ये तो ग्रेट स्टोर वाले तो बहुत ही चोर है. हर चीज के दिन में तुम दाम लगाते हैं. मगर ये जरूर है जो वैरायटी इनके यहाँ मिलती है ना. आप अखबार पढ़ रही हैं क्या?

यादों की परछाइयां। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का अभी आपने पहला भाग सुना। निर्देशक दीनानाथ। इस नाटक का दूसरा भाग सुनिएगा कल इसी समय हवा महल कार्यक्रम में।

गोल्फी है आपके जीवन में शास्त्रीयता बारीकी रागों की श्रृंगार सुरों का समय बीता दौर बदले कायम है संगीत की मधुर पाठशाला।

0: सुबह और शाम 6:45 मिनट पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये बात
0: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री नितिन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
2: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सीधा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लाना नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हमने अपने आप से आ गई।
0: तो सुनने में भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ

चित्रलोक कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं मीट वॉस और अरिजीत सिंह की आवाजों में वन नाइट स्टैंड फिल्म के गाने से। यह फिल्म का नाम वन नाइट स्टैंड। संगीत तैयार किया है मीट वॉस ने, बोल लिखे हैं शब्बीर अहमद ने।

सरस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी। आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत। गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दो जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
1: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
0: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी 2 जून।

0: सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
1: बधाई हो बधाई
0: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात। तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे। इस समय आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चल रहा है चित्रलोक। लेते छोटा सा अंतराल और वापस लौटते अपने कार्यक्रम में।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब सभी सैयद कादरी का लिखा गीत प्रीतम का संगीतबद्ध किया। फिल्म का नाम है भूल भुलैया, आवाज है केके की।

मुंशी द म्यूजिकल लीजिए इस फिल्म में सुनाई कविता कृष्णमूर्ति को मुजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है जतन ललित ने।

अपने कविता का श्रोता को खामोशी बनाए से कला सुना। कार्यक्रम की अंतिम पेशकश अजय निचले पेन से है। आवाज दे रहे हैं राहत फतेह अली खां। संगीत तैयार किए हैं सलीम सुलेमान ने और बोल हैं जयदीप सैनी के।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एम राजन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुड़गांव में केवल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाले क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 203 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जानी मानी फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल, मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एम राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एम राजन कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये

विस्तार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्ला, ताराराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी भीमदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को

0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक के 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई है। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रही है। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने यह बात कही।
2: रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है। इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
3: सेवन की अग्रीमेंट साइन। यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है।

0: जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में राजनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्ण शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.84 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। यह कुल अनुमान का 51% से अधिक है जो सामान्य बना रहने

की खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई है। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पूर्व परीक्षा के सुरक्षित सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देशभर के सभी मुख्यमंत्रियों उप राज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध।

0: आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वॉन्ग, जापान के विदेश मंत्री तोशे मित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
1: इस साल क्वाड विदेश

0: で、その電車がさ、どういうジャブかが分かるけど、3から4もちょっと8もちょっと、10、10で突き上げ、はい、突き上げさ、手がさ、この横に、この辺りにあるだけ。
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री और विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष नेता का अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दुबई पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता हॉर्मुज दर बंदर नगर ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम व्यवहार से प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
0: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार

0: का समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशिया अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में एक भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने यरामन अमन गेल्डी को 4-2 से हराया। वही 57 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत मामू को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने के पहले जीवन अशतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संत सृजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मनोनी पे ढाका भी परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

0: छब्बीस प्रोग्राम के प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजन को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत ऑस्ट्रेलिया जापान और अमरीका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की अक्षर ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akash Rani and I'm Simon Mujtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajan honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation underway to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system. 286 tourists rescued so far. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts that there are heat wave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Bhaver clinched gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today conferred the Padma Awards to 66 Indian personalities for the year 2026 at the Civil Investiture Ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award.
2: Padma Vibhushan Shri Dharmendra Singh Deol, Nanda Prant, Kala Film Abhinay, Kulki Patni, Shrimati Hema Malini.
1: The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajan was also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.P. Kumaraswamy were present on the occasion. All from our correspondent.
3: In the category of Padma

0: deset cent rashtrapati bhavan. Note of whom actor late Dharmendra and legendary violin master Dr. N. Rajan honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in COVID meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dheri clinch gold in men's freestyle category at Asian Under 23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: આકાશવાણી ભુજ સમાચાર વિભાગ રજૂ કરે છે સાપ્તાહિક કાર્યક્રમ સમાચાર દર્પણ. સૌ પ્રથમ નજર કરીએ આજના અંકમાં સામેલ મહત્વના સમાચારો પર. ભુજ દિલ્હી વચ્ચેની નવી દૈનિક ટ્રેન સેવાનો થયો પ્રારંભ. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓ બાદ જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતોમાં હોદ્દેદારોની કરવામાં આવી વરણી. અને 22મી મેએ કરાઈ આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવ વિવિધતા દિવસની ઉજવણી. ભુજ દિલ્હી વચ્ચેની નવી દૈનિક ટ્રેન સેવાનો પ્રારંભ થયો છે. રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે વિડીયો કોન્ફરન્સિંગ મારફતે લીલી ઝંડી બતાવી આ ટ્રેનનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો. જ્યારે ભુજ સ્ટેશન ખાતે યોજાયેલા કાર્યક્રમમાં સાંસદ વિનોદ ચાવડા, પશ્ચિમ રેલવેના જનરલ મેનેજર રમેશભાઈ પાંડે, અમદાવાદ મંડળના ડીઆરએમ વેદપ્રકાશ સહિતના અધિકારીઓ અને પદાધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
2: पूरे गुजरात के निवासियों को और खासकर भुज के यात्रियों को बहुत बहुत बधाई कि यहाँ से भुज से राजस्थान होते हुए दिल्ली की डायरेक्ट सेवा आज से शुरू की गई है. और माननीय सांसद जी बता रहे थे कोविड के समय में भी ये डिसाइड हो गया था, लेकिन कोविड के कारण फिर उस समय रुक गया और अल्टीमेटली उन सबके प्रयास से आज ये माननीय मंत्री जी ने इसको झंडी दिखाकर चालू किया है. जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया था, गुजरात को इस बार 17,000 से ज्यादा करोड़ की कैपेक्स दी गई है और उसके अंतर्गत पूरे गुजरात में कार्य हो रहा है. और यहाँ पर भुज की बात करें तो भुज में आप अगस्त के एंड तक सितंबर में देखेंगे कि ये स्टेशन बिल्डिंग, भव्य स्टेशन बिल्डिंग बनकर के तैयार हो जाएगी.
3: वेद प्रकाश हूँ, मैं डिविजनल रेलवे मैनेजर हूँ अहमदाबाद का. ये भुज से दिल्ली ट्रेन जो है ये बहुत मेहनत की गई है हमारे यहाँ के जो एमपी साहब हैं उनके द्वारा, क्योंकि ये ट्रेन का कोई पाथ नहीं बन रहा था. जो हमारी नॉर्मल रूट है यहाँ से जाने की, कि यहाँ से गांधीधाम, गांधीधाम से बिल्डी, बिल्डी से पालनपुर, पालनपुर से अजमेर होते हुए जयपुर होते हुए दिल्ली तक जाने का, तो पाथ भरा हुआ था, कोई गाड़ी नहीं जा सकती थी उसमें. एमपी साहब बार बार मिस्टर अश्विनी वैष्णव साहब जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनके पास जाकर के कि भाई हमको ये ट्रेन जरूरत है, यहाँ के लोगों की, यहाँ के पर्यटन के लिए जरूरत है, यहाँ पे जो कामगार वर्ग दूसरे बाहर से आते हैं उनके लिए जरूरत है, यहाँ के लोगों की जरूरत है, यहाँ का जो हैंडीक्राफ्ट है उसके प्रचार और प्रसार के लिए जरूरत है. और उनके ही प्रेशर से, उनके ही प्रयास से ये संभव हो पाया इस ट्रेन का. इस ट्रेन की खूबी मैं बता दूं कि ये कच्छ की ऐसी पहली ट्रेन है दिल्ली की जो कि डेली चलेगी. अभी तक जो भी ट्रेन चल रही थी या तो बाई वीकली था, दो दिन मतलब एक वीक में चलता है या तीन दिन चलता है, ये पहली ट्रेन होगी जो डेली चलेगी, सातों दिन चलेगी. और ये गुजरात में 6 जगह रुकेगी, 6 स्टेशनों को रुकेगी, 6 शहरों को जोड़ेगी. और ये हरियाणा का, राजस्थान का, दिल्ली का 19 नए शहरों को जोड़ेगी. तो इस तरह ये जो कच्छ रीजन है वो 25 अलग स्टेशन से जुड़ेगा.
4: कच्छ माटे खूब આનંદનો અવસર છે. આનંદની વાત છે કે આજે આપણા દેશની રાજધાની એટલે કે દિલ્હી, ભુજથી દિલ્હી વચ્ચે આપણને એક્સપ્રેસ ટ્રેન મળી છે, જે ટ્રેન આજે ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સાહેબ વર્ચ્યુઅલી અને જાલોરથી ભારત સરકારના સન્માનીય રેલ મંત્રી શ્રી આદરણીય શ્રી અશ્વિનીજી વૈષ્ણવજીના નેતૃત્વમાં આજે આ ટ્રેનને ભુજથી પ્રસ્થાન કરવામાં આવી હતી. ભુજની અંદર અમારી સાથે રાજ્ય સરકારના મંત્રી શ્રી આદરણીય ત્રિકરભાઈ છાંગા સાહેબ, પશ્ચિમ રેલવેના

0: राज है, बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे ऊंची सी दीवार।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान
1: और बीच में गायक था। लिटरली जो आप कह रहे हैं आप जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाए तो मैं गैर गाते गाते इस दीवार से जाती हूँ जब तक। मैंने तो बोल दी ये क्या जानती है भाई, तो भाग रही हूँ और जब भी कर रही हूँ गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। सर बड़ी टेंशन में वो शॉर्ट किया मैंने, शुक्र है गिरे गिरे।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध।

से लेकर आज के फनकार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है संगीतकार लक्ष्मीकांत पर। लक्ष्मीकांत की चर्चा प्यारे लाल के बगैर अधूरी है। जब जब लक्ष्मीकांत के गानों का जिक्र होता है तब तब प्यारे लाल का नाम भी आता है। इस जोड़ी ने हिंदी सिनेमा में बेमिसाल

मशहूर संगीतकार लक्ष्मीकांत प्रशांताराम कुदालकर का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। लक्ष्मीकांत दिवाली पर लक्ष्मी पूजा के दिन पैदा हुए थे तो परिवार ने उनका नाम लक्ष्मीकांत रख दिया, इस उम्मीद से कि एक दिन लड़का अपने नाम को सार्थक करेगा। लक्ष्मीकांत का बचपन मुंबई के विले पार्ले की झोपड़पट्टी में गरीबी में बीता। 9-10 साल की उम्र में उनके पिता नहीं रहे थे। लक्ष्मीकांत और उनके बड़े भाई ने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए संगीत सीखना तय किया। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन सीखने लगे और उनके बड़े भाई तबला। लक्ष्मीकांत ने 2 बरस तक हुसैन अली से फिर बाल मुकुंद इंदौरकर से मैंडोलिन की तालीम ली। बाद में हिंदी फिल्मों की पहली मशहूर संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगतराम के हुस्नलाल के पास आकर वायलिन बजाना सीखने लगे।

40 और 50 के दशक में हुस्नुल्लाह बुदतराम के शागिर्दों में सिर्फ लक्ष्मीकांत ही नहीं थे, शंकर जयकिशन, खयाम जैसे संगीतकार और महेंद्र कपूर जैसे गायक भी थे। लक्ष्मीकांत की मुलाकात प्यारेलाल से रेडियो क्लब कोलाबा में लता मंगेशकर के एक संगीतमय कार्यक्रम के दौरान हुई थी। लक्ष्मीकांत मैंडोलिन बजाते थे, प्यारेलाल वायलिन वादक थे और महान वायलिन वादक यहूदी मेनुहिन के वे भक्त थे। लता मंगेशकर ने दोनों की प्रतिभा को देखते हुए अपने भाई हृदयनाथ के ग्रुप में उन्हें बजाने का मौका दिलवाया और इसके साथ ही एस डी बर्मन, श्री रामचंद्र, मदन मोहन, शंकर जयकिशन जैसे कई संगीतकारों से दोनों की सिफारिश भी की। लिहाजा उन्हें वादक के रूप में छिटपुट काम मिलने लगा था। पहले इस जोड़ी ने चेन्नई जाकर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन वहाँ रास नहीं आया, इसलिए दोनों लौटकर मुंबई आ गए। प्यारेलाल ने अपने पिता से वायलिन बजाना सीखा। उनका सपना वियना जाकर किसी सिंफनी ऑर्केस्ट्रा में काम करने का था। उन्होंने खुद को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना शुरू कर दिया था। दूसरी ओर संगीतकार बनने का सपना देखने वाले

नागेलाल के रास्ते अलग अलग होने जा रहे थे, लेकिन दोस्ती ने जोर मारा और लक्ष्मीकांत जिद पर अड़ गए। उन्होंने किसी तरह प्यारे लाल को देश छोड़कर जाने से रोका। अपने दोस्त की जिद देखकर प्यारे लाल ने भी वियना जाने का विचार छोड़ दिया। इस तरह लक्ष्मीकांत को दोस्त मिल गया और प्यारे लाल को अपना देश नहीं छोड़ना पड़ा। दोनों की ये दोस्ती उनकी ही फिल्म दोस्ताना में मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाए गाने सलामत रहे दोस्ताना हमारा दोस्ती का कालजयी गीत बन गया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वादक से सहायक बने, फिर अरेंजर, उसके बाद फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार करने लगे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने असिस्टेंट के तौर पर सट्टा बाजार, छलिया, दिल भी तेरा, हिंदी तेरे और मदारी जैसी कई फिल्मों में काम किया। काम के सिलसिले में उनकी मुलाकात भोजपुरी फिल्मों के निर्माता के परवेश से हुई, जिन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी को चार फिल्मों में संगीत देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से इनमें से किसी भी फिल्म में उन्हें म्यूजिक देने का

1963 में एक छोटे बजट की फिल्म पारस बने उन्हें मिली तो उनके शुभचिंतकों ने उन्हें समझाया कि छोटे बजट की फिल्म से उनका करियर खराब हो सकता है, लेकिन ये फिल्म सुपर हिट हुई। इसका गाना हंसता हुआ नूरानी चेहरा लोगों की जुबान पर चढ़ गया और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सुरीला सफर

1964 में इस जोड़े को राष्ट्रीय प्रोडक्शन की छोटे बजट की फिल्म दोस्ती मिली। इसी साल उनके प्रेरणा स्रोत रहे शंकर जयकिशन, राज कपूर की भारी बजट की फिल्म संगम से फिल्म जगत में धूम मचा दिया। संगम और दोस्ती फिल्म फेयर पुरस्कारों की दौड़ में शामिल थे, पर बाजी मारी फिल्म दोस्ती।

संगीत का जोड़ी बॉलीवुड की अब तक की सबसे सफल जोड़ियों में से एक मानी जाती है। इन दोनों की जोड़ी को 7 बार सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सन 1965 में फिल्म दोस्ती के लिए मिला फिल्म फेयर पुरस्कार, सन 1968 फिल्म मिलन, सन 1970 फिल्म जीने की राह, सन 1978 में मिला फिल्म फेयर पुरस्कार अमर अकबर एंथनी के लिए, सन 1969 फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम, सन 1980 फिल्म सरगम, सन 1981

अभिमानी निर्माता निर्देशक सुभाष घई की कई फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। सन 1969 में आई फिल्म गौतम गोविंदा, सन 1980 की फिल्म कर्ज, 1982 की फिल्म विधाता, सन 1983 की फिल्म हीरो।

सन 1985 में आई फिल्म मेरी जंग। सुभाष घई के साथ कुछ और फिल्में भी हैं, जैसे करवा, रामलखन, खलनायक।

राजकुमार की फिल्मों में संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेजोड़ संगीत दिया। सन 1972 में आई फिल्म शोर, सन 1976 में आई थी फिल्म 10 नंबरी, सन 1974 की फिल्म रोटी कपड़ा और मकान, सन 1981 में आई फिल्म क्रांति में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने बेमिसाल संगीत दिया। राज कपूर की फिल्मों में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी ने बेमिसाल संगीत दिया। फिल्म बॉबिल, सत्यम शिवम सुंदरम और प्रेम रोग, इन फिल्मों में इनके संगीत का जादू सिर चढ़

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी की टोली ने एक से बढ़कर एक गाने दिए फिल्म संगीत में और इसीलिए आप रेडियो पर अक्सर सुनते हैं। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आनंद बख्शी से कुछ फिल्मों में गाने भी गवाए, जैसे फिल्म मोम की गुड़िया का गीत।

फिल्म चरस में गाना गाया आनंद बख्शी ने। दोस्तों फिल्मी दुनिया में पान को लेकर ये मशहूर था कि लक्ष्मीकांत जी के लिए पान नहीं तो काम नहीं, ऐसा हिसाब रहता था। इनका पसंदीदा पान कलकत्ते का मीठा पत्ता कम चूने वाला हुआ करता था। किसी भी रिकॉर्डिंग, मीटिंग या स्टेज शो जैसे बड़े प्रोग्राम्स में वो हमेशा अपने साथ एक खूबसूरत डिब्बे में पान रखकर चलते थे। इनके पान की आदत का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वे नहीं रहे इस दुनिया में, तब लक्ष्मीकांत के परिवार वालों ने उनके इस पसंदीदा पान को फोटो से छुआया था अंतिम दर्शन के समय। सन 1998 में लक्ष्मीकांत इस असार संसार से अलविदा की गए और ये जोड़ी हमेशा के लिए टूट गई। अपने जोड़ीदार लक्ष्मीकांत की अचानक मौत से प्यारे लाल को बड़ा गहरा सदमा लगा। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में संगीत देना

संगीत में जुड़ी की फिल्मों की लंबी फहरिस्त है। एक से बढ़कर एक गाने हैं। आधे घंटे के इस प्रोग्राम के सफर में सारी फिल्मों और सारे गानों को समेटना बड़ा मुश्किल है। आज बस इतना ही। आज के फिल्मकार कार्यक्रम आज केंद्रीयता संगीतकार जुड़े लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत पर। चलने से पहले आपको बता दें, शोध आलेख और स्वर आपके रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। आज के फिल्मकार

0: आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा रजू करिए छे नाटक
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुनहरी धड़कन छाया गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

की वादियों से आ रही है पुकार, हवाओं के संग संग चल रही है फिजाएं भी, लगा रही है गुहार।

लेकर के हाथों में हाथ जो चल पड़े हैं हम मोहब्बत की राहों में। सपने वो हसीन लाखों सपने अब आ गए हैं निगाहों में।

जाए खूबसूरत और ये मुलाकात बन जाए मोहब्बत। आती है तो आ जाए मौत बेशक कि अब हम ही है तेरे दिल की जरूरत।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जानी मानी फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एम राजन को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांची सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। Hi, it's

0: Human Fertilizer and Foreign Exchange.
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाद वाला सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वांग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्र में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में मेरे अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दोनों में एशियाई अंडर-20 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan, and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajan were also honored with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola Ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more than 300 tourists were trapped inside 65 cabins of the cable car, some hanging nearly 500 feet above the ground, triggering panic among tourists, including women and children. Emergency evacuation protocols were activated immediately. A massive seven-hour rescue operation was launched jointly by teams of NDRF, SDRF, Jammu and Kashmir Police, Army's Chinar Corps, and local administration. All passengers were brought to safety without any injuries. Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha said he monitored the rescue operation continuously and directed senior officials, including the DGP, to oversee rescue efforts on the ground. Chief Minister Umar Abdullah announced a probe into the malfunction and said actions would be taken if any lapses were found. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman has launched a set of strategic portals and initiatives aimed at strengthening the MSME ecosystem, enhancing last-mile credit delivery and accelerating the modernization of rural industries. Speaking at an event in Mumbai to mark the 37th anniversary of the Small Industries Development Bank of India, SIDBI today, Mrs. Sitharaman called for increased focus on the three Fs. fuel, fertilizer and forex amid the ongoing West Asia crisis, while asserting that the Indian economy remains resilient.
0: The West Asia crisis not only is a diplomatic or a geopolitical issue. For businesses and common people, it can mean higher fuel cost, delayed cargo, costlier shipping, shortage of inputs, pressure on working capital, and uncertainty in export orders. All of them coming together, it's a big challenge, not just for India, for many other countries. We must also recognize that India's domestic economic situation remains positive and resilient even today.
2: External Affairs Minister Dr. Ajay Shankar will host the Court of Foreign Ministers meeting in New Delhi tomorrow. Foreign Minister of Australia, Penny Wong, Foreign Minister of Japan, Toshimitsu Motegi, and Secretary of the State of United States, Marco Rubio, will participate in the meeting. The ministers will exchange views on advancing Quad cooperation across priority areas, review progress on ongoing Quad initiatives, and reflect on recent developments in the Indo-Pacific region and other international issues of mutual concern. Home Minister Amit Shah will visit India's border region over the next few days and hold security-related meetings. Sources said he will reach Bikaner, Rajasthan tonight and will visit the BSF's Central Border Outpost in the morning, tomorrow where he will interact with the security forces and inaugurate welfare schemes for them. In the afternoon, he will review the security situation in the border region of Bikaner. Officials said the Home Minister and the Rajasthan government, base of officials along with the district collectors and superintendent of police from Five Borders District, will attend the meeting. At Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing two gold medals today. And that's the end.